0: चौकी चले खने खने चलू मंद मनमथ पाठ पहला अनुबंध हृदय मुकुल हेरी हेरी थोर खनिया चर दाए खनी होए भोर
1: শুনছেন রেডিও বাংলা নেট ডট কম বাংলার গান বাঙালির প্রাণ।

0: पास खनी खनी अधर आगे करु बास चौकी चले खनी खनी चलु मंद मनमथ पाठ पहला अनुबंध हृदय मुकुल हिरी हिरी थोर खनिया चर दाए खनी हुई भोर
1: শুনছেন রেডিও বাংলা নেট ডট কম বাংলার গান বাঙালির প্রাণ।

0: छूट हास, खने खने अधर अगे करु बास, चौकी चले खने खने चलु मंद, मनमथ पाठ पहिला अनुबंध, हृदय मुकुल हेरी हेरी थोर, खने अचर दाए खने होए भोर।
1: শুনছেন রেডিও বাংলা নেট ডট কম, বাংলার গান, বাঙালির প্রাণ।